विक्रम संवत 2082, शालिवाहन शके 1948, आज सोमवार, अधिक ज्येष्ठ शुद्ध द्वितीया, अर्थात 18 मे 2026।

स्वरूप सनातन क्षराक्षर पर अव्ययाच्युत षड्गुणैश्वर्य सदालंकृत षड्दर्शन प्रतिपादित षडूर्मिवर्जित सर्वमय वेदरूप वेदजनक वेदप्रिय वेदोद्धारक वेदस्तव्य वेदस्थापक वेदरक्षक शरण।

श्रोते हो, आत्ताच आपण ऐकलात अधिक मासानिमित्त उपासनेचा विशेष कार्यक्रम अधिक मास महात्म्य। अधिक मास पोथी वाचन भाग्यश्री केसकर। निर्मिती ओरायन स्टुडिओज पुणे। प्रस्तुती भक्तिसुधा।

श्रोताओं अभी सुनते हैं पारंपरिक भक्ति रचना। संगीत है श्रीनिवास खड़े जी का और स्वर है पंडित भीमसेन जोशी जी का।

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं सुनते हैं संत मीराबाई की भक्ति रचना। संगीत है श्रीनिवास खड़े और स्वर पंडित उल्हास कशाळकर।

श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज में संत मीराबाई की भक्ति रचना। इसे संगीतबद्ध किया है पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने।

आइए सुनते हैं शैलेंद्र जी की भक्ति रचना। इसे संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने और इसे गाया है मन्ना डे और साथियों ने।

विक्रम संवत 2082, शालिवाहन शके 1948, आज सोमवार, अधिक ज्येष्ठ शुद्ध द्वितीया, अर्थात 18 मे 2026।

श्रोताओं अभी सुनते हैं पारंपरिक भक्ति रचना। संगीत है श्रीनिवास खड़े जी का और स्वर है पंडित भीमसेन जोशी जी का।

कैसा स्वस्थ बैसलासी, मी पामर अनाथ कृपण, माझे का न करीसी रक्षण, तू असूनी करुणाघन, मज की ऐसा उपेक्षीसी, मी निराश्रित असे म्हणोनी, सर्वजनी।

सनातन क्षराक्षर पर अव्ययाच्युत षड्गुणैश्वर्य सदालंकृत षड्दर्शन प्रतिपादित षडूर्मिवर्जित सर्वमय वेदरूप वेदजनक वेदप्रिय वेदोद्धारक वेदस्तव्य वेदस्थापक वेदरक्ष

श्रोते हो, आत्ताच आपण ऐकलात अधिक मासानिमित्त उपासनेचा विशेष कार्यक्रम अधिक मास महात्म्य। अधिक मास पोथी वाचन भाग्यश्री केसकर। निर्मिती ओरायन स्टुडिओज पुणे। प्रस्तुती भक्तिसुधा।

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं सुनते हैं संत मीराबाई की भक्ति रचना। संगीत है श्रीनिवास खड़े और स्वर पंडित उल्लास कशाळकर।

श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज में संत मीराबाई की भक्ति रचना। इसे संगीतबद्ध किया है पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने।

आइए सुनते हैं शैलेंद्र जी की भक्ति रचना। इसे संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने और इसे गाया है मन्ना डे और साथियों ने।

श्रोताओं अभी सुनते हैं पारंपरिक भक्ति रचना। संगीत है श्रीनिवास खड़े जी का और स्वर है पंडित भीमसेन जोशी जी का।

समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ।